ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।

हसमुख मंडालिया के स्वर में ये गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीर दास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं अंजना चटर्जी से संत सूरदास की ये रचना।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: 7DTH इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन। आज के कलाकार हैं कुमार रॉय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रुद्र नारायण कल्याणी।
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to a khayal in the rag Ahir Bhairav. Our artist is Kumar Roy. Accompanying our artist on the tabla is Rudra Narayan Kalyani.

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं गणेश चंद्र दास। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरणमोय मित्रा।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल। लिसन टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल। आवर आर्टिस्ट इज गणेश चंद्र दास। Accompanying our artist on the harmonium is Hiranmoy Mitro.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे गणेश चंद्र दास। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे हिरणमय मित्रा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Teen Taal. Our artist was Ganesh Chandra Das. Accompanying our artist on the harmonium was Hiranmoy Mitro. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, यह रेडियो चैनल रागम 24 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं मिश्र वाद्य संगीत. मिश्र वाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं चेलो वादन से. कलाकार है नैंसी कुलकर्णी. नैंसी कुलकर्णी चेलो पर प्रस्तुत कर रही है राग जय जयवंती, आलाप जोड़ झाला और उसके बाद चौताल में गत. आपके साथ पखवाज पर संगत कर रहे हैं माणिक मुंडे. सुनते हैं नैंसी कुलकर्णी का चेलो वादन राग जय जयवंती.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे नैन्सी कुलकर्णी का चेलो वादन राग था जय जयवंती। आपके साथ पखवाज पर संगत कर रहे थे माणिक मुंडे। श्रोताओं, मिश्र वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन वादन राग मियां मल्हार। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रामदास परसुले। सुनते हैं उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन पर बजाया हुआ राग मियां मल्हार।

श्रोताओं हम सुन रहे थे उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन वादन राग था मियां मल्हार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रामदास परसुले। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 डीटी चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है शरण रानी का सरोद पर बजाया राग बारी. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now have for you a sarod recital by Sharan Rani. She first presents Raag Darbari, in which you will hear a composition set to Vilambit and Drut Teen Taal.

0: अभी आप शरण रानी का सरोद पर बजाया राग दरबारी सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए चंद्रनंदन, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग बारी। कंटिन्यूइंग विद हर सरोद रिसाइटल, शरण रानी नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग चंद्रनंदन, इन विच यू विल हियर अ कंपोजिशन सेट टू विलंबित एंड द्रुत तीन ताल।

0: अभी आप शरण रानी का सरोद पर बजा राग चंद्रनंदन सुन रही थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड राग चंद्रनंदन एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय शरण रानी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी। विलंबित गत झुमरा ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। साथ संगत है बांसुरी पर देवेंद्र मुरुडेश्वर, तबले पर रामभाऊ भोरपकर। आइए सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी।

अभी अपने पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी सुना। सात संगत थी बांसुरी पर देवेंद्र मुर्डेश्वर, तबले पर रामभाऊ भोरपकर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी वादन, राग पुरिया कल्याण। विलंबित गत झुमरा ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। सात संगत है बांसुरी पर देवेंद्र मुर्डेश्वर, तबले पर पंडित निखिल घोष। आइए सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग पुरिया कल्याण।

अभी अपने पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग पुरिया कल्याण सुना। सात संगत थी बांसुरी पर देवेंद्र मुरडेश्वर, तबले पर पंडित निखिल घोष। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राग दरबारी कनाड़ा और राग चारुकेशी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति. तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. पंडित संदीपन समाजपति अपने गायन का आरंभ राग दरबारी कनाड़ा में ख्याल से कर रहे हैं. तो आइए सुनते हैं राग दरबारी कनाड़ा में ख्याल गायन. कलाकार पंडित संदीपन समाजपति.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन टू अ ख्याल इन राग दरबारी कनाड़ा फॉलोड बाय राग चारुकेशी. आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग पंडित संदीपन समाजपति. Accompanying on the tabla, Pandit Sujit Saha, and on the harmonium, Rathindranath Chakravorty. Now, listen to a khayal in Raag Darbari Kanara, followed by Raag Charukeshi by your artist, Pandit Sandipan Samajpati.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग दरबारी कानाड़ा में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। पंडित संदीपन समाजपति अपने ख्याल गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग चारुकेशी में ख्याल। तो आइए सुनते हैं राग चारुकेशी में ख्याल गायन, कलाकार पंडित संदीपन समाजपति।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग चारुकेशी में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग दरबारी का नारा एंड राग चारुकेशी बाय आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग पंडित संदीपन समाजपति, एकम्पानिंग ऑन द तबला पंडित सुजीत साहा एंड ऑन द हारमोनियम रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन राग किरवानी. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित शुभंकर बंदोपाध्याय. राग किरवानी संतूर पर कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य.
2: This is Ragam, 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening, we present a Hindustani instrumental recital. Listen to a Santoor recital in Raag Kirwani. Our artist this evening, Pandit Tarun Bhattacharya. Accompanying on the tabla, Pandit Shubhankar Bandhavadhyay. Now, listen to a Santoor recital in Raag Kirwani by Pandit Tarun Bhattacharya.

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंताला पुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। Tonight, in Ravi Vasari Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a saxophone recital by U. Shiva Prasad. U. Shiva Prasad, born into a family of musicians in Vishakhapatnam, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintala Pudi Varhala Raju Garu, and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi, it reflects his unwavering dedication, discipline, and passion for music, making him a role model for musicians alike.
2: Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman, and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansadhvani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीना रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग हंसध्वनि। Continuing his recital, यू शिव प्रसाद now presents another composition based on राग नवरस कानड़ा। Composition निन्नु वीना रामा, composed by त्यागराजा, is set to रूपकम तालम।

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the...
2: Namaste.

अब आप सुनेंगे राग यमन में मध्य लय बंदिश, बोल हैं सुगम रूप सुहावे, कलाकार हैं पंडित अजय पोहनकर। नाउ लिसन टू द राग यमन बाय पंडित अजय पोहनकर।

हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग देस। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं चलो रे ब्रज में देखन चलोरी। यह रिकॉर्डिंग वर्ष 1986 में की गई थी। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग देस। दिस वॉज रिकॉर्डेड इन द ईयर 1986।

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं पंडित अजय पोहनकर। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अजय पोहनकर। ये है राग।

Yeah.

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार थे पंडित अजय पोहनकर, संगत कलाकार थे तबले पर

यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समद खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अजय पोहनकर। द कंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय यदुनंदन गोस्वामी ऑन द तबला एंड समद खां ऑन द सारंगी। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन. कलाकार हैं शांति हीरानंद. आप सुनेंगे ठुमरी तिलक कामोद. बोल हैं बैरन कोयलिया नाबोल. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1982 में की गई थी. This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani light classical vocal recital by Shanti Hiranand. The rendition commences with Thumri Tilak Kamod. This was recorded in the year 1982.

अब आप सुनेंगे कजरी पीलू, बोल हैं बरसन लागी सावन बुंदियां। नाउ लिसन टू कजरी पीलू।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं शांति हीरानंद। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय शांति हीरानंद। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे भैरवी दादरा, बोल हैं चली रे मोर नैया किनारे किनारे। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स भैरवी दादरा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार थी शांति हीरानंद। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय शांति हीरानंद। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित निर्माल्य डे का गायन. इनका गाया राग शुद्ध कल्याण पहले प्रस्तुत है. चौताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं अल्लाह साहेब. पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Pandit Nirmalya Day. He is accompanied by Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj. First listen to Dhrupad in Rag Shuddh Kalyan, said to Chautal. The words are Allah Sahib.

0: अभी आप पंडित निर्माल्य डे का गाया राग शुद्ध कल्याण सुन रहे थे और प्रस्तुत है राग अडाना। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित निर्माल्य डे। नाउ लिसन टू राग अडाना इज अकंपनीड बाय मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज।

0: अभी आप पंडित निर्माल्य डे का गाया राग अडाना सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग अडाना बाय पंडित निर्माल्य डे। दिस प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास स्वामी की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुदिनी पेड़ने करने गायी समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं सुहास शामगांवकर के स्वर में। रचनाकार हैं संत तुलसीदास, संगीतकार हैं रविंद्र खासनीस।

0: रविन्द्र खासनीस के संगीत निर्देशन में अभी आपने संत तुलसीदास की भक्ति रचना सुनी, जिसे गाया है सुहास श्यामगांवकर ने। कार्यक्रम की अगली देशभक्ति पर रचना सुनते हैं समूह स्वर में।
1: मानुष की जा शत्रु।

समूह स्वर में अभी आपने ये देशभक्ति पर रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना, जिसे गाया है जानकी अय्यर ने।

जानकी अय्यर ने गाई संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत भानुदास की। आइए सुनते हैं समूह स्वर में, स्वरबद्ध किया है बाल माली ने।

संत भानुदास की ये भक्ति रचना अभी आपने समूह स्वर में सुनी, जिसके संगीतकार थे बाल माली। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं सुनील पासलकर के स्वर में। ये रचना है संत मुक्ताबाई की।

संत मुक्ताबाई ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी सुनील पासलकर के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं अनुराधा मराठे के स्वर में। ये रचना है रमन रणदिवे की।